0: आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशम्बे नगर और साढ़े 4 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते प्यारे सुनने वालों, रेडियो आवाज़ ताजिकी हिंदी भाषा की जारी है और आपका स्वागत है।

हमारे प्रसारण में आप सुन सकते हैं स्थायी और विदेशी समाचार, ताजिकिस्तान के नीतिक सांस्कृतिक सामाजिक जीवन के बारे में दिलचस्प बयान विश्लेषण विशेषज्ञों से बातचीत। आज की जिम्मेदारियों में इस प्रोग्राम के एडिटर रामजा और प्रोड्यूसर अबू मंसूर इस्माइल आपका समाचार भाग में स्वागत करते हैं और हम मुख्य खबरों से शुरू करेंगे।

नमस्ते आदरणीय श्रोताओं, आप सुन रहे हमारे विशेष रेडियो कार्यक्रम। आज हम अपने राष्ट्रीय जीवन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय राजकीय भाषा तथा उसके विकास और संवर्धन में राष्ट्र के अध्यक्ष ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति इमामोहिम इमालीरामो की भूमिका पर चर्चा करेंगे। हमारे रेडियो के साथ रहे। भाषा किसी भी राष्ट्र की पहचान, उसकी संस्कृति का दर्पण तथा उसकी राष्ट्रीय आत्मता का आधार होती है। किसी भी समाज की ऐतिहासिक स्मृतियां, परंपराएं, मूल्य और सांस्कृतिक धरोहर भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। ताजिक भाषा विश्व की प्राचीन और समृद्ध भाषाओं में से एक है, जिसका इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। ये भाषा सदियों से साहित्य, संस्कृति, ज्ञान और राज्य व्यवसाय की भाषा रही है तथा रुदकी, फिरदौसी, साजी, हाफिज, जामी, बेदिल और अनेक महान विद्वानों की अमूल्य रचनाओं को विश्व तक पहुंचाने का माध्यम बनी है। ताजिकिस्तान की स्वतंत्रता प्राप्त के बाद राजकीय भाषा के संरक्षण और विकास का प्रशासन राष्ट्रीय नीति का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में देश को अनेक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऐसे समय में राष्ट्रीय मूल्यों, विशेषकर भाषा की रक्षा और विकास अत्यंत आवश्यक था। इसी संदर्भ में शांति और राष्ट्रीयता के संस्थापक राष्ट्र नायक तथा ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति इमामोहिम इमालीरामो की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रही है। राष्ट्र के नेता ने सदैव इस बात पर बल दिया कि भाषा केवल संवाद का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा और राज्य की नींव है। उनके अनुसार जो राष्ट्र अपनी भाषा का सम्मान करता है और उसके विकास के लिए प्रयासरत रहता है, वही अपनी स्वतंत्रता, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान को सुरक्षित रख सकता है। यही कारण है कि स्वतंत्रता के पूरे कालखंड में राष्ट्र की भाषा का विकास राज्य की प्राथमिकताओं में शामिल रहा। राजकीय भाषा के विकास में राष्ट्र अध्यक्ष का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भाषा संबंधी कानूनी आधार को सुदृढ़ बनाना है। उनके मार्गदर्शन और पहल पर ताजिकिस्तान गणराज्य की राजकीय भाषा संबंधी विविधियों को और अधिक प्रभावी बनाया गया। ताजिकिस्तान गणराज्य की राजकीय भाषा के बारे में कानूनी भाषा के संरक्षण, विकास और व्यापक उपयोग के लिए मजबूत आधार प्रदान किया। इस कानून ने सरकारी संस्थानों, शैक्षिक संस्थाओं, जन संचार माध्यमों और सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में राजकीय भाषा के प्रयोग को सुनिश्चित किया। स्वतंत्रता के वर्षों में ताजिक भाषा का प्रयोग जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़ा। आज अधिकांश सरकारी दस्तावेज, विधिक अधिनियम, आदेश और प्रशासनिक निर्णय ताजिक भाषा में तैयार किए जाते हैं। इस प्रक्रिया ने न केवल भाषा का विकास को प्रोत्साहित किया, बल्कि राष्ट्रीय गौरव और राज्य के प्रति सम्मान की भावना को भी सुदृढ़ किया। राष्ट्र अध्यक्ष का योगदान केवल प्रशासनिक और कानूनी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने ताजिक भाषा के इतिहास और महत्व के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी बहुचर्चित कृति भाषा रश का आस्थित है, अर्थात जबोनी मिलात हसी मिलात, ताजिक भाषा के इतिहास और विकास पर आधारित एक महत्वपूर्ण शोध ग्रंथ है। इस कृति में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक ताजिक भाषा की यात्रा का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। ये पुस्तक राष्ट्रीय आत्मा, चेतना, सांस्कृतिक गौरव और भाषा के प्रति सम्मान की भावना को सुदृढ़ करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। महामहिम इमालीरामो अपने भाषणों और संदेशों में भाषा की शुद्धता और उसकी संरक्षण के आवश्यकता पर विशेष बल देते हैं। उनका मानना है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपनी मातृभाषा का सम्मान करे, उसे समृद्ध बनाए और उसके साहित्यिक मानकों का पालन करे। वे भाषा में अनावश्यक विदेशी शब्दों के अत्यधिक प्रयोग से बचने तथा शुद्ध और सुंदर अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल देते हैं। ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति के समर्थन से देश में शब्दकोशों, विश्वकोशों, पाठ्य पुस्तकों और भाषा संबंधी शैक्षिक सामग्री के प्रकाशन का कार्य भी व्यापक स्तर पर किया गया।
ہے ان پریاسوں نے تاجک بھاشا کی شب سنپدا کو سمرت بنانے اور اس سے آدھونک وگیان پروجوگکی تتھا آرتھک شیتروں کے آوشیکتاؤں کے انورو وکاسیت کرنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھائی ہے. سانسکرتک شیتر میں بھی راشٹر نایا کی پہل اتنان سراہنی رہی ہے. فروغ صبح دونوں کی تو بس علم فروغ معرفہ تتھا تاجکستان وطن عزیز من جیسی راشی پرتیوگتاؤں نے یوواؤں میں ادیان ساہتیہ بھاشا اور سانسکرتی کے پرتی روچی کو بڑھاوا دیا ہے. ان پرتیوگتاؤں کے مادھیم سے ہزاروں چھاتر چھاتراؤں نے اپنی بھاشائی پرتیبھا ساہتیہ گیان اور رچناتمک کشمتاؤں کا وکاس کیا ہے. یوواؤں کو رش کی بھوشیہ شکتی مانتے ہوئے رشت نایک سدیو انہیں ماتر بھاشا کے گہن ادیان کے لیے پریرت کرتے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ ودیشی بھاشاؤں کا گیان آوشیہ ہے کنتو اپنی ماتر بھاشا میں دکشتا اس سے بھی ادھک مہتوپورن ہے. ماتر بھاشا راشٹری پہچان دیش بھکتی اور سانسکرتک چیتنا کا آدھار ہے. آج تاجکستان کے ودیالیوں اور وشو ودیالیوں میں تاجک بھاشا کے ادھیان اور شکشان کے لیے ویاپک سویدھائیں اپلبدھ کرائی گئی ہے. نئے پاٹیہ کرم وکاسیت کیے گئے ہیں. آدھونک پاٹیہ پستکیں پرکاشت کی گئی ہے اور بھاشا شکشان کی گنوتا کو نرنتر بہتر بنایا جا رہا ہے. یہ سب راجیہ اور سرکار کی بھاشا کے پرتی پرتیبدھتا کا प्रमाण है. ویشویکرن اور ڈیجیٹل یوگ میں بھاشا سنرکشن کی چنوتیاں اور بھی بڑھ گئی ہیں. راشٹر نائک نے انیک افسروں پر اس بات پر بل دیا کہ تاجک بھاشا کو ڈیجیٹل دنیا میں بھی اپنا سشکت استھان بنانا چاہیے. اسی ادیشیا سے الیکٹرانک شبدکوشوں تاجک بھاشا کے ویب سائٹوں ڈیجیٹل سنسادنوں اور آن لائن سامگری کے وکاس کو پروتساہت کیا جا راہی. اس سے بھاشا آدھونک یوگ کی آوشیکتاؤں کے انوروپ وکاسیت ہو رہی ہے. آج تاجک بھاشا کے بس

0: आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशम्बे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते प्यारे सुनने वालों, रेडियो आवाज ताजिक की हिंदी भाषा की जारी है और आपका स्वागत है।

हमारे प्रसारण में आप सुन सकते हैं स्थायी और विदेशी समाचार, ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन के बारे में दिलचस्प बयान, विश्लेषण, विशेषज्ञों से बातचीत। आज की जिम्मेदारियां में इस प्रोग्राम के एडिटर रामजा और प्रोड्यूसर अबू मंसूर इस्माइल आपका समाचार विभाग में स्वागत करते हैं और हम मुख्य खबरों से शुरू करेंगे।

नमस्ते आदरणीय श्रोताओं, आप सुन रहे हमारे विशेष रेडियो कार्यक्रम। आज हम अपने राष्ट्रीय जीवन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय राजकीय भाषा तथा उसके विकास और संवर्धन में राष्ट्रीय अध्यक्ष तजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति इमामोहिम इमालीरामो की भूमिका पर चर्चा करेंगे। हमारे रेडियो के साथ रहे। भाषा किसी भी राष्ट्र की पहचान, उसकी संस्कृति का दर्पण तथा उसके राष्ट्रीय अस्मिता का आधार होती है। किसी भी समाज की ऐतिहासिक स्मृतियां, परंपराएं, मूल्य और सांस्कृतिक धरोहर भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। ताजिक भाषा विश्व की प्राचीन और समृद्ध भाषाओं में से एक है, जिसका इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। ये भाषा सदियों से साहित्य, संस्कृति, ज्ञान और राजा व्यवसाय की भाषा रही है तथा रुदकी, फिरदौसी, साजी, हाफिज, जामी, बेदिल और अनेक महान विद्वानों की अमूल्य रचनाओं को विश्व तक पहुंचाने का माध्यम बनी है। तजिकिस्तान की स्वतंत्रता प्राप्त के बाद राजकीय भाषा के संरक्षण और विकास का प्रशासन राष्ट्रीय नीति का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में देश को अनेक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऐसे समय में राष्ट्रीय मूल्यों, विशेषकर भाषा की रक्षा और विकास अत्यंत आवश्यक था। इसी संदर्भ में शांति और राष्ट्रीयता के संस्थापक राष्ट्रनायक तथा तजिकिस्तान गणराज्य

Raša peti mama him imwali rahmuki bhumika atyan mahatvapuran aur itihasik rahi hai. Rashke neta ne sadev is baat par bal diya ki bhasha keval samvad ka sadhan nahi balki rashki atma aur rajya ki neev hai. Unke anusar jo rasht apni bhasha ka samman karta hai aur uske vikas ke liye prayasarat rehta hai wahi apni swatantrata sanskriti aur rashi pehchan ko surakshit rakh sakta hai. Yahi karan hai ki swatantra के पूरे काल कहांद में राजकीय भाषा का विकास राज्य की प्राथमिकताओं में शामिल रहा. राजकीय भाषा के विकास में राष्ट्र अध्यादेश का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भाषा संबंधी कानूनी आधार को सुदृढ़ बनाना है. उनके मार्गदर्शन और पहल पर तजकिस्तान गणराज्य की राजकीय भाषा संबंधी विविधियों को और अधिक प्रभावी बनाया गया. तजकिस्तान गणराज्य की राजकीय भाषा के बारे में कानूनी भाषा के संरक्षण विकास और व्यापक उपयोग के लिए मजबूत आधार प्रदान किया. इस कानून ने सरकारी संस्थानों शैक्षिक संस्थाओं जन संचार माध्यमों और सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में राजकीय भाषा के प्रयोग को सुनिश्चित किया. स्वतंत्रता के वर्षों में ताजी भाषा का प्रयोग जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़ा. आज अधिकांश सरकारी दस्तावेज विधिक अधिनियम आदेश और प्रशासनिक निर्णय ताजिक भाषा में तैयार किए जाते हैं. इस प्रक्रिया ने न केवल भाषा का विकास को प्रोत्साहित किया बल्कि राष्ट्रीय गौरव और राज्य के प्रति सम्मान की भावना को भी सुदृढ़ किया. राष्ट्र अध्यादेश का योगदान केवल प्रशासनिक और कानूनी क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि उन्होंने ताजिक भाषा के इतिहास और महत्व के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उनकी बहुचर्चित कृति भाषा रश का आस्थित है अर्थात जबोनी मिलाद हसी मिलाद ताजिक भाषा के इतिहास और विकास पर आधारित एक महत्वपूर्ण शोध ग्रंथ है. इस कृति में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक ताजिक भाषा की यात्रा का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है. ये पुस्तक राष्ट्रीय आत्मा चेतना सांस्कृतिक गौरव और भाषा के प्रति सम्मान की भावना को सुदृढ़ करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है. महामहिम इमानी रहमान आपने भाषणों और संदेशों में भाषा की शुद्धता और उसकी संरक्षण के आवश्यकता पर विशेष बल देते हैं. उनका मानना है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपनी मातृभाषा का सम्मान करे उसे समृद्ध बनाए और उसके साहित्यिक मानकों का पालन करे. वे भाषा में अनावश्यक विदेशी शब्दों के अत्यधिक प्रयोग से बचने तथा शुद्ध और सुंदर अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल देते हैं. तजकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति के समर्थन से देश में शब्दकोशों विश्वकोशों पाठ्य पुस्तकों और भाषा संबंधी शैक्षिक सामग्री के प्रकाशन का कार्य भी व्यापक स्तर पर किया गया. इन प्रयासों ने ताजिक भाषा की शब्द संपदा को समृद्ध बनाने और उससे आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक क्षेत्रों के आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. सांस्कृतिक क्षेत्र में भी राष्ट्र नायक की पहल अत्यंत सराहनीय रही है. फरूगी सुबह दोनों किताबें इल्म फरूगे मारिफा तथा तजकिस्तान वतन अजीज़ मन जैसी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं ने युवाओं में अध्ययन साहित्य भाषा और संस्कृति के प्रति रुचि को बढ़ावा दिया है. इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से हजारों छात्र छात्राओं ने अपनी भाषाई प्रतिभा साहित्य ज्ञान और रचनात्मक क्षमताओं का विकास किया है. युवाओं को राष्ट्र की भविष्य शक्ति मानते हुए राष्ट्र नायक सदैव उन्हें मातृभाषा के गहन अध्ययन के लिए प्रेरित करते हैं. उनका मानना है कि विदेशी भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है किंतु अपनी मातृभाषा में दक्षता उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है. मातृभाषा राष्ट्रीय पहचान देशभक्ति और सांस्कृतिक चेतना का आधार है. आज तजकिस्तान के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ताजिक भाषा के अध्ययन और शिक्षा के लिए व्यापक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है. नए पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं आधुनिक पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की गई है और भाषा शिक्षा की गुणवत्ता को निरंतर बेहतर बनाया जा रहा है. ये सब राज्य और सरकार की भाषा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है.
वैश्वीकरण और डिजिटल युग में भाषा संरक्षण की चुनौतियां और भी बढ़ गई है। राष्ट्रनायक ने अनेक अवसरों पर इस बात पर बल दिया कि ताजिक भाषा को डिजिटल दुनिया में भी अपना सशक्त स्थान बनाना चाहिए। इसी उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक शब्दकोशों, ताजिक भाषा के वेबसाइटों, डिजिटल संसाधनों और ऑनलाइन सामग्री के विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे भाषा आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हो रही है। आज ताजिक भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और राज्य व्यवस्था का प्रतीक बन चुकी है। इसकी वर्तमान उपलब्धियां राष्ट्रनायक की दूरदर्शी नीति और निरंतर समर्थन का परिमाण है। उनके नेतृत्व में ताजिक भाषा ने नया गौरव प्राप्त किया है और समाज को एक सूत्र में बांधने वाली शक्ति के रूप में स्थापित हुई है। अंततः ये कहा जा सकता है कि राजकीय भाषा के विकास, संरक्षण और संवर्धन में महामहिम इमादी रामू की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। उनके प्रयासों से भाषा की कानूनी स्थिति मजबूत हुई, उसका प्रयोग व्यापक हुआ, उसके अध्ययन और शोध को नई दिशा मिली तथा राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ आधार प्राप्त हुआ। आज प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वो इस अमूल्य राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा करे, उसकी शुद्धता बनाए रखे और आने वाली पीढ़ियों तक उसके गौरव को पहुँचाए। प्यारे सुनने वालों, ये थे हमारे टिपानी तजकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति मामाहिम इमाली रामू की भूमिका राष्ट्रीय भाषा के विकास में। प्रिय श्रोताओं, एक मधुर गीत सुनने के बाद हम अपने कार्यक्रम को आगे जारी रहेंगे। इस मधुर गीत के बाद हमारी सहयोगी शायरा बोनू आपको खुजांग किले के बारे में रोचक जानकारी प्रस्तुत करेंगी। हमारे साथ

प्यारे सुनने वालों, याद दिलाना है कि आप सुन रहे रेडियो आवाज़ ताजिक और अभी हमने तय किया कि आपको लुई शेर अली का जीवन और साहित्यिक योगदान के बारे में बताएंगे। हमारे साथ रहे। लुई शेर अली आधुनिक ताजिक साहित्य के सबसे प्रमुख और सामान्य कवियों में से एक थे। वे देशभक्ति, मानवता, राष्ट्रीय चेतना और मातृभाषा के प्रति प्रेम के कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके कविताओं में मातृभूमि के प्रति गहरा लगाव है, राष्ट्रीय संस्कृति और इतिहास के प्रति सम्मान तथा मानवीय मूल्यों की रक्षा का संदेश मिलता है। अपनी अनूठी प्रतिभा और प्रभावशाली काव्या शैली के कारण उन्होंने लाखों पाठकों की हृदय में विशेष स्थान प्राप्त किया। लुई शेर अली का जन्म 20 मई 1941 को तजिकिस्तान के पंजाकें जिले के मजूरी शरीफ गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उनका बचपन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के कठिन समय में बीता। उस समय लोगों का जीवन आसान नहीं था, लेकिन ग्रामीण वातावरण, कठिन परिश्रम और साधारण जीवन ने उनके व्यक्तित्व और दृष्टिकोण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बचपन से ही उन्हें साहित्य और कविता में विशेष रुचि थी। उन्होंने महान फारसी ताजी कवियों जैसे रुदकी, फिरदौसी, सादी और हाफिज के रचनाओं का गहन अध्ययन किया और उनसे प्रेरणा प्राप्त की। माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने तजिकिस्तान राज्य विश्वविद्यालय के ताजिक भाषा एवं साहित्य विभाग में प्रवेश लिया। विश्वविद्यालय के वर्षों में उनकी साहित्यिक प्रतिभा और अधिक निखर कर सामने आई। इसी दौरान उनकी पहली कविताएं समाचार पत्रों और साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। उनके शिक्षकों और वरिष्ठ साहित्यकारों ने उनकी प्रतिभा को पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने शास्त्रीय और आधुनिक साहित्य का गंभीर अध्ययन किया, जिससे उनकी बौद्धिक और साहित्यिक दृष्टि का विस्तार हुआ। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने विभिन्न सांस्कृतिक और पत्रकारिता संस्थानों में कार्य किया, साथ ही वे निरंतर कविता लेखन में भी सक्रिय रहे। 1960 और 1970 के दशक में उनका नाम ताजिक साहित्य जगत में तेजी से प्रसिद्ध हुआ। उनकी कविताएं नई सोच, गहरी संवेदनाओं और सामाजिक सरोकारों के कारण विशेष रूप से लोकप्रिय हुई। पाठकों को उनकी रचनाओं में आम लोगों का जीवन, उनके आकांक्षाएं और समाज की वास्तविक समस्याएं दिखाई देती थी। लुई शेर अली की रचनाओं का मुख्य विषय मातृभूमि है। उन्होंने तजिकिस्तान को पवित्र भूमि, पूर्वजों की धरोहर और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना है। उनके अनेक कविताओं में तजिकिस्तान के सुंदर पर्वतों, स्वच्छ नदियों, हरे भरे बागों और मेहनती लोगों का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण मिलता है। उनके लिए मातृभूमि केवल रहने की जगह ही नहीं थी, बल्कि सम्मान, आस्थित और आश्रय स्वाभिमान का प्रतीक थी। वे हमेशा लोगों को अपने देश के प्रेम करने और राष्ट्रीय मूल्यों की रक्षा करने का संदेश देते थे। उनकी रचनाओं का एक महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रीय आत्म चेतना भी है। सोवियत संघ के अंतिम वर्षों और तजिकिस्तान की स्वतंत्रता के प्रारंभिक काल में उन्होंने इतिहास, संस्कृति और महाराष्ट्रीय व्यक्तियों पर अनेक कविताएं लिखी। वे अपने पूर्वजों की उपलब्धियों पर गर्व करते थे और लोगों को अपनी संस्कृति विरासत को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि जो राष्ट्र अपने ऐतिहासिक और संस्कृति को भूल जाता है, वो उज्ज्वल भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। भाषा का विषय भी उनके साहित्य में विशेष स्थान रखता है। लुई शेर अली ताजी भाषा को राष्ट्र की सबसे मूल्यवान धरोहर मानते थे। उन्होंने अपनी कविताओं में बार बार इस बात पर जोर दिया कि भाषा किसी भी राष्ट्र की पहचान और अस्तित्व का आधार होती है। वे लोगों से अपनी मातृभाषा का सम्मान करने, उसे सुरक्षित रखने और उसके विकास में योगदान देने का आह्वान करते थे। इसी कारण उन्हें ताजिक भाषा के प्रमुख संरक्षकों में गिना जाता है। राष्ट्रीय और देशभक्ति विषयों के साथ साथ प्रेम भी उनकी कविताओं का एक महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने सच्चे प्रेम, निष्ठा,
मित्रता और मानवीय भावनाओं पर अनेक सुंदर कविताएं लिखी। उनकी प्रेम कविताएं गहरी संवेदनाओं और सच्ची भावनाओं से परिपूर्ण है। वे प्रेम को जीवन की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे और इसे मानव व्यक्तित्व के विकास का महत्वपूर्ण साधन बताते थे। माता का विषय भी उनकी रचनाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने मां को त्याग, करुणा, स्नेह और पवित्रता का प्रतीक माना। अपनी अनेक कविताओं में उन्होंने मां के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया है और परिवार तथा समाज के निर्माण में उसकी भूमिका की प्रशंसा की है। उनकी ये कविताएं अपनी भावनात्मक गहराई के कारण पाठकों को अत्यधिक प्रभावित करती है। लुईस शेर अली केवल कवि ही नहीं बल्कि एक सक्रिय सामाजिक व्यक्तित्व भी थे। उन्होंने साहित्यिक और सामाजिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे तजकिस्तान लेखक संघ के सक्रिय सदस्य रहे और युवा साहित्यकारों के मार्गदर्शन तथा राष्ट्रीय साहित्य के विकास में योगदान दिया। वे सदैव शांति, एकता और सामाजिक सद्भाव के समर्थन रहे। तजकिस्तान के कठिन समय में उनकी कविताएं लोगों को एकता और भाईचारे का संदेश देती थी। उनकी साहित्यिक विरासत अत्यंत समृद्ध है। अपने जीवन काल में उन्होंने अनेक कविता संग्रह, लंबी कविताएं और साहित्यिक लेख लिखे। उनकी रचनाएं केवल तजकिस्तान ही नहीं बल्कि अन्य फारसी भाषी देशों में भी लोकप्रिय है। उनकी कई कविताओं का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उनकी काव्य शैली सरल, प्रभावशाली और गहन विचारों के परिपूर्ण है, जो पाठकों को गहराई से प्रभावित करती है। साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। उन्हें तजकिस्तान के जान कवि के उपाधि से सम्मानित किया गया। वे केवल अपनी साहित्यिक प्रतिभा के कारण ही नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय समर्पण और सामाजिक जिम्मेदारी के कारण भी लोगों के बीच अत्यंत सम्मानित थे। जून 2000 को उनका निधन हो गया है। उनका निधन ताजिक साहित्य और संस्कृति के लिए एक बड़ी क्षति थी, किंतु उनकी अमूल्य रचनाएं और विचार आज भी जीवित थी। उनकी कविताएं विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है तथा साहित्य कार्यक्रमों में सुनाई जाती है। वे आज भी नई पीढ़ी को देशभक्ति, मानवता और सांस्कृतिक चेतना की प्रेरणा देती है। अंततः में कहा जा सकता है कि लुईस शेर अली ताजिक साहित्य के उन महान व्यक्तियों में से है जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन राष्ट्र, भाषा और संस्कृति की सेवा में समर्पित कर दिया। उनकी कविताएं राष्ट्रीय चेतना, मानवीय मूल्यों और मातृभूमि के प्रति प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। उनका साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके जीवन काल में था। वे आने वाले पीढ़ियों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे और ताजिक साहित्य के इतिहास में सदैव सम्मान के साथ याद किए जाएंगे। प्यारे सुनने वालों, ये थे हमारे टिप्पणी लुईस शेर अली के जीवन के बारे में।